0: Sanan. Only on MGM 90.8 FM.
1: और क्या हाल चाल बवाल, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, होना भी चाहिए क्योंकि आज से जो गणपति बाप्पा हमारे घर आ गए हैं तो सब कुछ आपसे बढ़िया ही होगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से और MGM 90.8 FM की तरफ से गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा से अब यही प्रार्थना है कि जो कुछ विघ्न हमारे लाइफ में होना तो उन्हें प्लीज दूर कीजिएगा। स्पेशली ना तो जो डिप्रेशन एंजाइटी इन मामलों के जो विघ्न होते हैं ना, तो उस वजह से बच्चे आजकल ना तो बहुत ही परेशान होते हैं, तो ये विघ्न भी सबसे पहले दूर होना चाहिए और सभी विघ्न हमसे दूर हो जाए, यही प्रार्थना हम विघ्नहर्ता से करते हैं। सो आपको फिर से एक बार गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से 10 दिन तो बहुत ही बढ़िया माहौल रहेगा अपने शहर में, एकदम मस्त मौला। तो यार एंजॉय कीजिएगा गणपति उत्सव। और इसी के साथ आज के शो का आगाज करते हैं गणपति बाप्पा के नाम के साथ। तो बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चू अस्तु बच्चू।
1: काय मित्रांनो, मग तुम्हाला ही आरती पाठ झाली का नाही या वर्षी सुद्धा? नाहीतर काय आपल्याला आरती पूर्ण पाठ होत नाही, फक्त जय देव इतकंच पाठ असतंय। आणि आरतीच्या वेळेस मात्र काही काही अशी मुलं असतात यार, त्यांना पूर्ण आरती पाठ नसते, फक्त जय देव ही जी लाईन आली ना, मग त्यांच्या जोश एकदम निर्माण होतो। सो यार, मला सुद्धा ही आरती पूर्ण पाठ आहे। आता तुम्ही असा विचार करू नका की अदनानला कसका ही आरती पाठ आहे, हाय तो हाय भाई क्या है ना, देखिए मेरे घर में भी ना तो गणपती बाप्पा विराजमान होते है बचपन से ही। जैसे मतलब मेरा जो घर है ना, तो एक पुराना ऐसा वाड़ा होता है ना, तो उस टाइप मेरा घर है। तो वहां पर जो हमारे किराएदार थे ना, उनके घर में गणपति बाप्पा आते थे, बट उनका घर छोटा होने की वजह से जो हमारे घर में का दीवान खाना है ना, यानी कि जो हॉल है ना घर में का, वो बड़ा था। तो हमने उनको परमिशन दे दी थी कि आप चाहे तो हमारे घर में गणपति बाप्पा को बिठा सकते है। तो ये ऐसा सिलसिला शुरू है। तो आज भी वो हमारे घर में रहते है और गणपति बाप्पा हमारे घर में आते है। आज उनका आगमन होने वाला है हमारे भी घर पर। तो इस वजह से मुझे ना तो आरती पूरी की पूरी मुंह जबानी याद है, ताकि बचपन से वो कानों पर आती है। और हर दिन फिर गणपति के दिनों में 10 दिन आरती हमारे घर में होती है, तो इस वजह से वो आरती याद है। सो यार, मेरे जैसे भी कुछ मेमोरीज आपके पास है क्या, तो होगे तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताइए। डीएम करे आरजे अदनान को, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो 9359320080 पर। और अब एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर हिट गाने एंड स्टे ट्यून्ड।
2: Only on MGM 90.8

अपने इंडिया में ना तो गणेश चतुर्थी बहुत यूनिक तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। तमिलनाडु में पिल्लैयार चतुर्थी इस नाम से गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर गणपति जी को पोंगल और रसम चढ़ाया जाता है। उसके बाद कर्नाटका में विनायका चतुर्थी इस नाम से ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। केरला में लंबोदर पूजा इस नाम से उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर ना तो पूजा के दौरान कथकली डांस ना तो गणेश जी का स्वागत किया जाता है। गोवा में चोहटा इस नाम से ना तो ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर गणपति बाप्पा के साथ साथ गौरी जी और महादेव जी की भी पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत उत्साह के साथ ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, और हैदराबाद में ना तो खैरताबाद गणेश दर्शन ये बहुत विशेष होता है। इसी के साथ राजस्थान में मोती दुंगारी गणेश मंदिर में विशेष पूजा होती है और विशेष श्रृंगार होता है। इसी के साथ यहाँ पर घेवर चढ़ाया जाता है गणपति बाप्पा को, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा में गणेश पूजा के नाम से ना तो ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर गणपति जी को रसगुल्ला और संदेशा मिठाई ये चढ़ाई जाती है। और गुजरात में गणेश जी को दौड़पाक एंड श्रीखंड चढ़ाया जाता है, और पेंडालों में ना तो गरबा के साथ गणेश जी का स्वागत किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महाराष्ट्र में इंडिया का ना तो सबसे बड़ा गणेश उत्सव अपने महाराष्ट्र में होता है, जहाँ पर पूरे 10 दिन ना तो उत्साह से हम सब लोग ना गणेश उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में सबसे जोर शोर से गणेश उत्सव ना तो बस महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत दूर दूर से लोग ना तो देश विदेश से अपने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव देखने के लिए आते हैं। स्पेशली मुंबई पुणे में बहुत सारे लोग खास गणपति फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो पूरे इंडिया में कुछ इस तरीके से गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको फिर से एक बार गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश है सराखों पर। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। आज गाने की फरमाइश आई है।

और ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए ना तो ये गाना बहुत काम की चीज है, ना मुंह छुपा के जियो। चलो फिर प्रेम जी की फरमाइश पर ये मोटिवेटेड और प्रेम भरा गाना अभी हम एंजॉय करते हैं। आपकी भी दोस्तों कुछ फरमाइश होगी तो हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इट्स व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080। जल्द से जल्द फरमाइश बताइए, फिलहाल प्रेम की फरमाइश पर।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: है। गणपति बाप्पा घर आए हैं और बाप्पा आए तो घर में मोदक तो बनेंगे ही ना। दूध आएगा, खवा आएगा, ड्राई फ्रूट्स आएगी और मिठाई भी रहेगी। ये सब चीजें घर में होती है, मोदक के साथ इतने सारे चीजें होती है। लेकिन एक सवाल है, जो सामान हम मार्केट से घर ले जा रहे हैं वो सच में उतना ही प्योर है जितना हम समझते हैं? बड़ा सवाल है ना, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ना तो मिठाई, खवा, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और इसी के साथ मिलावट वो भी बहुत बढ़ती है। तो इसी बात को लेकर FDA ना तो अब एकदम एक्शन मोड पर आ चुकी है। जितने भी मिठाई के खाने की दुकान है जहाँ पर दूध, दही, खवा ये सारी चीजें मिलते हैं, पनीर मिलता है, तो उनकी एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से चेकिंग भी हो रही है। तो बापा के लिए मोदक बनाए, मिठाई खाए, लेकिन थोड़ा स्मार्टली, क्योंकि अगर आप बाहर से जो चीजें ला रहे हो वो सेफ है या नहीं वो भी देखना चाहिए। हालांकि FDA तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर रहा है और एकदम स्ट्रिक्ट मोड के ऊपर सारे दुकानों की चेकिंग शुरू है और किसी मिठाई में कुछ मिलावट अगर नजर आ रही है उस दुकान को तुरंत सील किया जा रहा है। और ना अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये दुकानदार कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तो आप इसकी शिकायत FDA में कर सकते हो। टोल फ्री नंबर है 1-800-222-365। नंबर फिर से दोहराता हूँ, 1-800-222-365। ये नंबर याद रखिए। तो इस बार गणपति बापा को जो हमें प्रसाद चढ़ाना है वो हमें मिठाई या मोदक नहीं, शुद्ध मिठाई और मोदक खिलाने हैं। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
4: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
3: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
4: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

सोचो जरा, अगर आपका मूड ठीक ना हो और आप अनहैप्पी हो तो आपको ऑफिशियली छुट्टी मिल जाए तो क्या भाई, ये एक सपना ही है और सपना बन के रह जाएगा। बट देखिए ना कितना बढ़िया हो सकता है ना अगर ये सपना सच हो तो। मतलब अगर आप खुश नहीं हो तो ऑफिस मत आओ। मंडे मॉर्निंग बॉस का कॉल, अदनान ऑफिस क्यों नहीं आया? इसमें सर आज थोड़ा अनहैप्पी फील हो रहा है मुझे। बॉस, ओ कोई बात नहीं, टेक केयर। अरे ये तो इंडिया है, यहाँ तो एम्प्लॉई बोल दे सर मैं मेंटली एग्जॉस्ट होता हूँ। बॉस, अच्छा एक काम करो, पहले वो एक्सेल शीट कंप्लीट करो, बाद में तुम्हें जो करना है वो करो। और अगर सैलरी के बाद भी अनहैप्पी हो, एचआर बोलेगा सैलरी तो आ गई ना, हैप्पीनेस का क्या है, वो पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम तुम्हारा देख लो। अब मैं इतनी अनहैप्पी वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, मतलब मूड की, बिकॉज चाइना में एक ऐसा रूल आया है जहाँ पर ऑफिशियली अनहैप्पी लीव अप्रूव हुई है। मतलब अगर आपका ऑफिस आने का मूड नहीं हो, आप दुख में हो, आपको कोई स्ट्रेस हो, या बस आप थक चुके हो, यानी कि आप अनहैप्पी हो, तो आप ऑफिस नहीं आ सकते हो। और इसके बदले आपकी सैलरी वैलरी कुछ नहीं कटेंगी, उल्टा कंपनी बोलेंगी ठीक है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख, जब तू ठीक महसूस करेगा तब ऑफिस आ जा। तो ऐसा रूल चाइना में आ गया है। उन लोगों के तो मजे है यार, वरना अगर ये रूल हमारे इंडिया में आता ना, ये जो आशिक प्रजाति है ना, ये सबसे ज्यादा छुट्टियां मारती। इनका तो आधे से ज्यादा हर दिन मूड अनहैप्पी होता ही है। बंदे का मैसेज नहीं आया, अनहैप्पी, तो कब तक बॉस भी झेलेगा उनको। बट ये रूल ऐसा चाइना में आया है, आई होप कि कभी तो ऐसा रूल हमारे इंडिया में भी आ जाए। और भले अनहैप्पी वाला ना आए, एक रूल आ गया ना तो एम्प्लॉय समाज खुश हो जाएगा, वो है वीकेंड। दो वीकेंड है ना, अब लोग कहेंगे यार हमें तो दो वीकेंड है। अरे भाई ऐसे बहुत से कंपनीज है जहां पर बस वीकेंड एक ही मिलता है, संडे को। सैटरडे के दिन भी काम करना पड़ता है, बस ये सैटरडे संडे वाला वीकेंड हर ऑफिस में कंपलसरी हो जाए तो मजे आ ही जाएंगे। सो एम्प्लॉयज को अनहैप्पी लीव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर क्या ही बोले, कुछ सपने सपने बनकर रह जाते हैं। किसी का सपना तो दो दिन वीकेंड एंजॉय करने का है, वो एक दिन का करता है, और किसी का तो अनहैप्पी लीव का है मेरे जैसे, जो कि कभी हो ही नहीं सकता अपने यहाँ पर। चाइनीज एम्प्लॉयज का तो मजे है भाई, बहुत ही अच्छा। खैर क्या ही बोले, स्टे ट्यून्ड।

0: हेलो, कैसे हो आप? एकदम मस्त मजे में तो हो गए ही। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज से ना तो मजे वाले दिन शुरू हो गए ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि गणपति बाप्पा का आगमन आज हो रहा है। सो सबसे पहले तो आपको गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बात याद रखिएगा ट्रैफिक अपडेट में कि शहर में ना तो आज जगह जगहों पर मिरोनुक निकलने वाली है, गणपति बाप्पा आ रहे हैं, इस वजह से शहर के बहुत से रास्तों पर क्राउड होगा। तो ऐसे क्राउड वाले जगहों पर अगर आप गाड़ी लेकर ही जा रहे हो तो गाड़ी थोड़ी आहिस्ता से चलाइएगा, आराम से चलाइएगा, वरना कुछ कुछ लोगों को पता नहीं, एक आदत होती है सामने कितना भी क्राउड क्यों ना हो गाड़ी की स्पीड कम करते ही नहीं। एंड एक बात याद रखिए, अगर बहुत ज्यादा छोटे रास्ते हैं और बहुत क्राउड दिख रहा है तो वहां पर गाड़ी लेकर जाना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप लेकर जाओगे आपके पीछे और 2-3-4 गाड़ियां होते हैं, वो सोचते भाई ये जा रहा है इसके पीछे मैं भी निकलता हूं, तो इस वजह से ट्रैफिक जैम बहुत होता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा ताकि हमारी वजह से ना तो किसी और को तकलीफ ना हो और आपके ऐसे प्यारे से काम से ना तो बापा जरूर खुश होंगे। तो इतना याद रखिएगा कि ट्रैफिक शहर में आज बहुत रहने वाला है, तो अपनी गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, और हाँ हेलमेट जरूर यूज कीजिएगा, वो भी एक बात है। बाकी तो सुनते रहे आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

5 डे वर्किंग वीक के लिए बैंक एम्प्लॉय सड़क पर उतरे थे, जानते हो। अब भाई इनकी डिमांड तो बहुत सही है यार, और उनका देखकर बाकी भी जो एम्प्लॉयज है अलग ऑफिस के, वो भी कह रहे होंगे यार इनके साथ साथ अगर हमारी भी डिमांड पूरी हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे ऑफिसेज है जहां पर 6 डे वीक होता है काम का, वर्किंग वीक। 5 डे वीक बहुत कम लोगों का होता है। और संडे का हाल तो मत ही पूछिएगा, एक ही दिन हम बेचारों को छुट्टी मिलती है, सुबह उठते ही लगता है चलो आज आराम करूंगा, फिर घर के काम, कपड़े, शॉपिंग, पर्सनल काम, ये होते होते शाम हो जाती है और संडे कहता है भाई मैं चलता हूँ अब तो। और इंसान सोचता है अभी तो संडे आया था, चला भी गया, लेकिन सवाल ये भी है कि 2 दिन का वीकेंड क्यों जरूरी है। देखिए, 1 दिन की छुट्टी में बॉडी को रेस्ट देना और पर्सनल लाइफ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल जाता है। पहले दिन इंसान रिकवर करने में लगता है और दूसरे दिन एक्चुअल एंजॉय या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेस्ट का मतलब काम से भागना नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बॉसेस को ऐसा लगता है, एम्प्लॉयज ना रेस्ट करने का मतलब काम से भागना ऐसा समझते। बट हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस से एम्प्लॉय फ्रेश माइंड के साथ काम करता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है और बर्नआउट का रिस्क भी एकदम कम हो जाता है। ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं, ये एक रिपोर्ट में आया है। तो यार वो लोग बड़े खुश नसीब है जिनका ऑलरेडी 5 डे वर्किंग वीक है, और जो 6 डे वर्क करते हैं ना, पता नहीं उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था इसलिए उनको 6 दिन का ऐसा वर्क वीक मिल रहा है। बाय द वे, आपका वर्किंग वीक कैसा है, 5 डे या 6 डे, बताइए जरा DM ऑन इंस्टा RJ अदनान एंड स्टे ट्यून्ड।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.

0: बॉलीवुड में कुछ प्रेम कहानियां बस कहानियां नहीं, उनके पीछे एक पूरी फिल्म छुपी होती है। और अब ऐसी एक आइकॉनिक लव स्टोरी बड़े पर्दे पर आने वाली है, कमाल और मीना। फिल्म की कहानी है लेजेंडरी एक्ट्रेस मीना कुमारी और फिल्म मेकर कमाल अमरोही के रिलेशनशिप पर, मतलब इन दोनों की कहानी है जो कि हमें बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। कमाल अमरोही पाकिजा के डायरेक्टर थे और मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक ट्रेजिडी क्वीन, और ये ट्रेजिडी क्वीन उनको खिताब किसने दिया था, कमाल अमरोही ने दिया था। और कहा जा रहा है कि मेकर्स ने इन दोनों की कहानी को समझने के लिए उनके पर्सनल लेटर्स और डायरीज के नोट्स भी यूज की है इस फिल्म में, और उसके सहारे ये पूरी फिल्म की कहानी लिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीना कुमारी का किरदार कौन निभाएगा, तो इसके लिए तृप्ति डिमरी का नाम सबसे पहले आया है एंड उनके साथ सैफ अली खान का नाम भी है जो कि अमरोही जी का किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने कास्टिंग को अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। फिलहाल कास्टिंग पर तो सस्पेंस बना ही है, बट आपको क्या लगता है कि मीना कुमारी जी के कैरेक्टर के लिए तृप्ति डिमरी ये सही चॉइस है या नहीं, आपको क्या लगता है बताइए जरा, डीएम कीजिएगा आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। और बाकी भाई सैफ अली खान तो कमाल अमरोही के किरदार के लिए परफेक्ट है ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है वो भी जरा याद से बताइए। बाकी तो सुनते रहिए
1: Five.

0: यानी कि एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: इस गाने में कागज के फूल देने की बात क्यों कही गई है?
2: कागज के फूल लाओ तेरे लिए।
1: जब हम प्यार में होते हैं ना तो थोड़े पागल होते हैं और अपने महबूब को कुछ ऐसी चीज देना चाहते जो उसके पास हमेशा रहे, तो इसीलिए अगर वो नॉर्मल फूल देता तो मुरझाया जाता, तो इसीलिए उसने कागज के फूल देने की बात की है। इस गाने में आशिक अपने प्यार के उस स्टेज पर है जब वो अपने आप को सौंप देता है और वो स्टार्टिंग में नास्तिक होता है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार इंसान को बदल देता है और वो आस्तिक बन जाता है और उसके लिए दुआएं मांगने लगता है। कहीं ना कहीं इस गाने की कहानी नोटबुक इस फिल्म से मिलती जुलती है। इस फिल्म में आशिक अपने महबूब से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और वो कहती है,
3: क्या चाहिए तुम्हें?
4: मुझे नीले शटर्स वाला एक सफेद घर चाहिए।
1: और 7 साल तक दोनों की मुलाकात नहीं होती। इस दरमियान उस आशिक ने अपने महबूब के लिए घर बना दिया और अब उस महबूब की शादी हो रही है, तभी वो न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखती है। नवजोत आहूजा का यह गाना कहीं ना कहीं इस फिल्म के कहानी से मिलता जुलता है।

गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। The song decoding with me, यानी कि RJ Adnan on MGM 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

93.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर Adnan का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well. RJ and Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MGM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DM KG का इंस्टा पर, RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTEC, MTEC, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: हेलो हाय नमस्कार छत्रपति संभाजी नगर
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8

0: HTM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज एडिक्शन ट्रीटमेंट ECT काउंसलिंग मैरिज काउंसलिंग चाइल्ड गाइडेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल अदालत रोड सिग्नल विवेकानंद कॉलेज रोड सतीश मोटर के पीछे समर्थ नगर छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस सिडको N5 छत्रपति संभाजीनगर
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर An architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait. For the cap round, MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: Exploring what's next.
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5,

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

कहते हैं ना, भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती, भाषा तो वो एहसास है जिससे हम अपने दिल की बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं। वेलकम बैक MGM रेडियो 90.8 FM पे, मैं हूँ RJ भूषण। दोस्तों आज है हिंदी दिवस। हिंदी की एक खास बात है, ये सिर्फ किताबों या भाषणों की भाषा नहीं है, हमारे रोजमर्रा की बातचीत में हिंदी कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। और मजेदार बात यह है कि हम बोलते बोलते भाषाओं का ऐसा कॉम्बो बना लेते हैं कि सामने वाला भी सोचता है भाई ये हिंदी है, मराठी है या इंग्लिश का नया वर्जन। लेकिन शायद यही तो हमारी खूबसूरती है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग शब्द लेकिन भावनाएं वही। तो आज हिंदी दिवस पर हिंदी को सिर्फ मुश्किल शब्दों वाली भाषा समझने के बजाय उस भाषा की तरह सेलिब्रेट कीजिए जिसमें आपने कभी अपने दोस्तों की दिल की बात बताई होगी, घर वालों से मजाक किया होगा या कोई गाना गुनगुनाया होगा। तो दोस्तों हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहे RJ भूषण के साथ MGM रेडियो 90.8 FM,

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर,
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: हाथ उठा कर बुला रहा घर, चल रहे मुसाफिर चल रहे, अब अपने घर को चल रहे। ये मेरे

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एंड 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

कैसे हो आप? एकदम मस्त मजे में तो हो गए ही। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज से ना तो मजे वाले दिन शुरू हो गए ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि गणपति बाप्पा का आगमन आज हो रहा है। सो सबसे पहले तो आपको गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बात याद रखिएगा ट्रैफिक अपडेट में कि शहर में ना तो आज जगह जगहों पर मिरौनुक निकलने वाली है, गणपति बाप्पा आ रहे हैं, इस वजह से शहर के बहुत से रास्तों पर क्राउड होगा। तो ऐसे क्राउड वाले जगहों पर अगर आप गाड़ी लेकर ही जा रहे हो तो गाड़ी थोड़ी आहिस्ता से चलाइएगा, आराम से चलाइएगा, वरना कुछ कुछ लोगों को पता नहीं एक आदत होती है सामने कितना भी क्राउड क्यों ना हो गाड़ी की स्पीड कम करते ही नहीं। एंड एक बात याद रखिए, अगर बहुत ज़्यादा छोटे रास्ते हैं और बहुत क्राउड दिख रहा है तो वहाँ पर गाड़ी लेकर जाना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप लेकर जाओगे आपके पीछे और 2-3-4 गाड़ियाँ होते हैं, वो सोचते भाई ये जा रहा है इसके पीछे मैं भी निकलता हूँ, तो इस वजह से ट्रैफिक जैम बहुत होता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा ताकि हमारी वजह से ना तो किसी और को तकलीफ ना हो और आपके ऐसे प्यारे से काम से ना तो बापा जरूर खुश हो गए। तो इतना याद रखिएगा कि ट्रैफिक शहर में आज बहुत रहने वाला है, तो अपनी गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, और हाँ हेलमेट जरूर यूज कीजिएगा, वो भी एक बात है। बाकी तो सुनते रहे आरजे अदनान के साथ।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: फाइव डे वर्किंग वीक के लिए बैंक एम्प्लॉय सड़क पर उतरे थे, जानते हो। अब भाई इनकी डिमांड तो बहुत सही है यार, और उनका देखकर बाकी भी जो एम्प्लॉयज है अलग ऑफिस की, वो भी कह रहे होंगे यार इनके साथ साथ अगर हमारी भी डिमांड पूरी हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे ऑफिसेज है जहां पर सिक्स डे वीक होता है काम का, वर्किंग वीक। फाइव डे वीक बहुत कम लोगों का होता है, और संडे का हाल तो मत ही पूछिएगा। एक ही दिन हम बेचारों को छुट्टी मिलती है, सुबह उठते ही लगता है चलो आज आराम करूंगा, फिर घर के काम, कपड़े, शॉपिंग, पर्सनल काम, ये होते होते शाम हो जाती है और संडे कहता है भाई मैं चलता हूँ अब तो। और इंसान सोचता है अभी तो संडे आया था, चला भी गया, लेकिन सवाल ये भी है कि दो दिन का वीकेंड क्यों जरूरी है। देखिए एक दिन की छुट्टी में बॉडी को रेस्ट देना और पर्सनल लाइफ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल जाता है। पहले दिन इंसान रिकवर करने में लगता है और दूसरे दिन एक्चुअल एंजॉय या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेस्ट का मतलब काम से भागना नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बॉसेस को ऐसा लगता है एम्प्लॉयज ना रेस्ट करने का मतलब काम से भागना ऐसा समझते। बट हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस से एम्प्लॉय फ्रेश माइंड के साथ काम करता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है और बर्नआउट का रिस्क भी एकदम कम हो जाता है। ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं, ये एक रिपोर्ट में आया है। तो यार वो लोग बड़े खुश नसीब है जिनका ऑलरेडी 5 डे वर्किंग वीक है, और जो 6 डे वर्क करते हैं ना, पता नहीं उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था इसलिए उनको 6 दिन का ऐसा वर्क वीक मिल रहा है। बाय द वे आपका वर्किंग वीक कैसा है, 5 डे या 6 डे, बताइए जरा DM ऑन इंस्टा RJ अदनान एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकिल

अपने इंडिया में ना तो गणेश चतुर्थी बहुत यूनिक तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। तमिलनाडु में पिल्लैयार चतुर्थी इस नाम से गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर गणपति जी को पोंगल और रसम चढ़ाया जाता है। उसके बाद कर्नाटका में विनायका चतुर्थी इस नाम से ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। केरला में लंबोदर पूजा इस नाम से उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर ना तो पूजा के दौरान कथकली डांस ना तो गणेश जी का स्वागत किया जाता है। गोवा में चोहटा इस नाम से ना तो ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर गणपति बाप्पा के साथ साथ गौरी जी और महादेव जी की भी पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत उत्साह के साथ ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, और हैदराबाद में ना तो खैरताबाद गणेश दर्शन ये बहुत विशेष होता है। इसी के साथ राजस्थान में मोती दुंगारी गणेश मंदिर में विशेष पूजा होती है और विशेष श्रृंगार होता है। इसी के साथ यहाँ पर घेवर चढ़ाया जाता है गणपति बाप्पा को, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा में गणेश पूजा के नाम से ना तो ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर गणपति जी को रसगुल्ला और संदेशा मिठाई ये चढ़ाई जाती है। और गुजरात में गणेश जी को दोड़पाक एंड श्रीखंड चढ़ाया जाता है, और पेंडालों में ना तो गरबा के साथ गणेश जी का स्वागत किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महाराष्ट्र में इंडिया का ना तो सबसे बड़ा गणेश उत्सव अपने महाराष्ट्र में होता है, जहाँ पर पूरे 10 दिन ना तो उत्साह से हम सब लोग ना गणेश उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में सबसे जोर शोर से गणेश उत्सव ना तो बस महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत दूर दूर से लोग ना तो देश विदेश से अपने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव देखने के लिए आते हैं। स्पेशली मुंबई पुणे में बहुत सारे लोग खास गणपति फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो पूरे इंडिया में कुछ इस तरीके से गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपको फिर से एक बार गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

बॉलीवुड में कुछ प्रेम कहानियां बस कहानियां नहीं, उनके पीछे एक पूरी फिल्म छुपी होती है। और अब ऐसी एक आइकॉनिक लव स्टोरी बड़े पर्दे पर आने वाली है, कमाल और मीना। फिल्म की कहानी है लेजेंडरी एक्ट्रेस मीना कुमारी और फिल्म मेकर कमाल अमरोही के रिलेशनशिप पर, मतलब इन दोनों की कहानी है जो कि हमें बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। कमाल अमरोही पाकिजा के डायरेक्टर थे और मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक ट्रेजिडी क्वीन, और ये ट्रेजिडी क्वीन उनको किताब किसने दिया था, कमाल अमरोही ने दिया था। और कहा जा रहा है कि मेकर्स ने इन दोनों की कहानी को समझने के लिए उनके पर्सनल लेटर्स और डायरीज के नोट्स भी यूज की है इस फिल्म में, और उसके सहारे ये पूरी फिल्म की कहानी लिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीना कुमारी का किरदार कौन निभाएगा, तो इसके लिए तृप्ति डिमरी का नाम सबसे पहले आया है एंड उनके साथ सैफ अली खान का नाम भी है जो कि अमरोही जी का किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने कास्टिंग को अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। फिलहाल कास्टिंग पर तो सस्पेंस बना ही है, बट आपको क्या लगता है कि मीना कुमारी जी

0: कैरेक्टर के लिए तृप्ति डिमरी ये सही चॉइस है या नहीं, आपको क्या लगता है बताइए जरा डीएम कीजिएगा आरजी अदनान इस इंस्टा पेज पर। और बाकी भाई सैफ अली खान तो कमल अमरोही के किरदार के लिए परफेक्ट है ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है वो भी जरा याद से बताइए। बाकी तो सुनते रहिए
1: ओनली ऑन MGM 90.8।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: इस गाने में कागज के फूल देने की बात क्यों कही गई है?
2: कागज के फूल लाऊं तेरे लिए।
1: जब हम प्यार में होते हैं ना तो थोड़े पागल होते हैं और अपने महबूब को कुछ ऐसी चीज देना चाहते जो उसके पास हमेशा रहे, तो इसीलिए अगर वो नॉर्मल फूल देता तो मुरझाया जाता, तो इसीलिए उसने कागज के फूल देने की बात की है। इस गाने में आशिक अपने प्यार के उस स्टेज पर है जब वो अपने आप को सौंप देता है और वो स्टार्टिंग में नास्तिक होता है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार इंसान को बदल देता है और वो आस्तिक बन जाता है और उसके लिए दुआएं मांगने लगता है। कहीं ना कहीं इस गाने की कहानी नोटबुक इस फिल्म से मिलती जुलती है। इस फिल्म में आशिक अपने महबूब से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और वो कहती है,
3: क्या चाहिए तुम्हें?
4: मुझे नीले शटर्स वाला एक सफेद घर चाहिए।
1: और 7 साल तक दोनों की मुलाकात नहीं होती। इस दरमियान उस आशिक ने अपने महबूब के लिए घर बना दिया और अब उस महबूब की शादी हो रही है, तभी वो न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखती है। नवजोत आहूजा का ये गाना कहीं ना कहीं इस फिल्म के कहानी से मिलता जुलता है।

0: गणपति बाप्पा घर आए हैं और बाप्पा आए तो घर में मोदक तो बनेगी ही ना। दूध आएगा, खवा आएगा, ड्राई फ्रूट्स आएगी और मिठाई भी रहेगी। ये सब चीजें घर में होती है, मोदक के साथ इतने सारे चीजें होती है। लेकिन एक सवाल है, जो सामान हम मार्केट से घर ले जा रहे हैं वो सच में उतना ही प्योर है जितना हम समझते हैं? बड़ा सवाल है ना, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ना तो मिठाई, खवा, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और इसी के साथ मिलावट वो भी बहुत बढ़ती है। तो इसी बात को लेकर FDA ना तो अब एकदम एक्शन मोड पर आ चुकी है। जितने भी मिठाई के खाने की दुकान है जहाँ पर दूध, दही, खवा ये सारी चीजें मिलते हैं, पनीर मिलता है, तो उनकी एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से चेकिंग भी हो रही है। तो बाप्पा के लिए मोदक बनाए, मिठाई खाए, लेकिन थोड़ा स्मार्टली, क्योंकि अगर आप बाहर से जो चीजें ला रहे हो वो सेफ है या नहीं वो भी देखना चाहिए। हालांकि FDA तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर रहा है और एकदम स्ट्रिक्ट मोड के ऊपर सारे दुकानों की चेकिंग शुरू है और किसी मिठाई में कुछ मिलावट अगर नजर आ रही है उस दुकान को तुरंत सील किया जा रहा है। और ना अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये दुकानदार कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तो आप इसकी शिकायत FDA में कर सकते हो। टोल फ्री नंबर है 1-800-222-365। नंबर फिर से दोहराता हूँ, 1-800-222-365। ये नंबर याद रखिए। तो इस बार गणपति बाप्पा को जो हमें प्रसाद चढ़ाना है वो हमें मिठाई या मोदक नहीं, शुद्ध मिठाई और मोदक खिलाने हैं। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: सोचो जरा, अगर आपका मूड ठीक ना हो और आप अनहैप्पी हो तो आपको ऑफिशियली छुट्टी मिल जाए तो क्या भाई, ये एक सपना ही है और सपना बन के रह जाएगा। बट देखिए ना, कितना बढ़िया हो सकता है ना अगर ये सपना सच हो तो। मतलब अगर आप खुश नहीं हो तो ऑफिस मत आओ। मंडे मॉर्निंग बॉस का कॉल, अदनान ऑफिस क्यों नहीं आया? इसमें सर आज थोड़ा अनहैप्पी फील हो रहा है मुझे। बॉस, ओ कोई बात नहीं, टेक केयर। अरे ये तो इंडिया है, यहाँ तो एम्प्लॉई बोल दे सर मैं मेंटली एग्जॉस्ट होता हूँ। बॉस, अच्छा एक काम करो, पहले वो एक्सेल शीट कंप्लीट करो, बाद में तुम्हें जो करना है वो करो। और अगर सैलरी के बाद भी अनहैप्पी हो, एचआर बोलेगा सैलरी तो आ गई ना, हैप्पीनेस का क्या है, वो पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम तुम्हारा देख लो। अब मैं इतनी अनहैप्पी वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, मतलब मूड की, बिकॉज चाइना में एक ऐसा रूल आया है जहाँ पर ऑफिशियली अनहैप्पी लीव अप्रूव हुई है। मतलब अगर आपका ऑफिस आने का मूड नहीं हो, आप दुख में हो, आपको कोई स्ट्रेस हो, या बस आप थक चुके हो, यानी कि आप अनहैप्पी हो, तो आप ऑफिस नहीं आ सकते हो। और इसके बदले आपकी सैलरी वैलरी कुछ नहीं कटेंगी, उल्टा कंपनी बोलेंगी ठीक है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख, जब तू ठीक महसूस करेगा तब ऑफिस आ जा। तो ऐसा रूल चाइना में आ गया है। उन लोगों के तो मजे है यार, वरना अगर ये रूल हमारे इंडिया में आता ना, ये जो आशिक प्रजाति है ना, ये सबसे ज्यादा छुट्टियां मारती। इनका तो आधे से ज्यादा हर दिन मूड अनहैप्पी होता ही है। बंदे का मैसेज नहीं आया, अनहैप्पी, तो कब तक बॉस भी झेलेगा उनको। बट ये रूल ऐसा चाइना में आया है, आई होप कि कभी तो ऐसा रूल हमारे इंडिया में भी आ जाए। और भले अनहैप्पी वाला ना आए, एक रूल आ गया ना तो एम्प्लॉय समाज खुश हो जाएगा, वो है वीकेंड। दो वीकेंड है ना, अब लोग कहेंगे यार हमें तो दो वीकेंड है। अरे भाई ऐसे बहुत से कंपनीज है जहां पर बस वीकेंड एक ही मिलता है, संडे को, सैटरडे के दिन भी काम करना पड़ता है। बस ये सैटरडे संडे वाला वीकेंड हर ऑफिस में कंपलसरी हो जाए तो मजे आ ही जाएंगे। सो एम्प्लॉयज को अनहैप्पी लीव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर क्या ही बोले, कुछ सपने सपने बनकर रह जाते हैं। किसी का सपना तो दो दिन वीकेंड एंजॉय करने का है, वो एक दिन का करता है, और किसी का तो अनहैप्पी लीव का है मेरे जैसे, जो कि कभी हो ही नहीं सकता अपने यहाँ पर। चाइनीज एम्प्लॉयज का तो मजे है भाई, बहुत ही अच्छा। खैर क्या ही बोले, स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो रे भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।